0: जॉब को, अपने काम को एंजॉय करते हैं। आपके काम के बारे में तो हमें बहुत बातें करनी है आपके साथ, लेकिन पहले लेके चलते हैं पीछे। आपका जन्म कहाँ पे हुआ, आपका क्या सफर रहा वहां से लेके अभी तक आप न्यूजीलैंड में पामेस्टन नॉर्थ में कैसे पहुंच गए?
1: हाँ जी जरूर, मेरा जन्म हुआ जी पंजाब के छोटे से शहर मोगा में। मेरे फादर मिलिट्री में थे और मेरी मदर गवर्नमेंट टीचर थी। मेरे बड़े भाई साहब जो मेरे से 12 साल बड़े हैं
0: जी,
1: वो उन्होंने होम्योपैथिक एडमिशन ली एक कॉलेज अबोहर
0: जी,
1: अबोहर में, शहर अबोहर है। तो जब मेरा बचपन था ना जी, मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती थी, कभी उनको टाइफाइड हो गया, साल के 6 महीने वो हॉस्पिटल रहती थी, साल के 6 महीने वो हमारे साथ रहती थी। जब मेरे भाई ने एडमिशन ली तो उन्होंने मम्मी की कंसल्टेशन करवाई अपने टीचर से जो कोलकाता से ट्रेंड थे, कोलकाता होम्योपैथी का हब था
0: जी।
1: तब शुरू से जो भी नए होम्योपैथ आए वो कोलकाता से ही सेटल, कोलकाता में ही सेटल हुए। तो जो होम्योपैथी का सबसे बढ़िया कॉलेज है जो कोलकाता का है। तो जब मेरे भैया ने मेरी मम्मी की कंसल्टेशन करवाई तो मैंने मैजिक मिरेकल होते हुए देखा, मम्मी इम्प्रूव करने लग गई
0: जी,
1: वो ज़्यादा टाइम अपने घर पे स्पेंड करने लग गई और तब से मेरी रुचि बढ़ गई होम्योपैथी में
0: जी।
1: फिर जब मेरा भाई पढ़ता था तो उसके मैगजीन आते थे घर पे, तो मैं अपने स्पेयर टाइम में वो पढ़ती थी और उसमें केस स्टडीज आती थी, मैं पढ़ती थी, मेरा और इंटरेस्ट बढ़ने लगा
0: जी।
1: ठीक है जी, फिर मेरे भाई के कलीग्स आते थे, वो अपने रिजल्ट्स बताते थे, तो मेरा मैं डेस्परेटली होम्योपैथ बनना चाहती थी
0: जी।
1: जब मैंने पीएमटी का एग्जाम दिया भी तो उसमें 8,000 बंदों में मेरा रैंक था 1200 कुछ, तो मैं क्वालिफाई कर गई थी डेंटिस्ट के लिए
0: जी। क्या बात,
1: मैं क्वालिफाई कर गई थी पर मेरा मन नहीं था। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि भी मैं डेंटिस्ट नहीं बनूंगी, मैं होम्योपैथ ही बनूंगी। तो फिर हमारे घर के पास ही मोगा के पास एक लुधियाना में कॉलेज है लॉर्ड महावीरा, वहाँ पे मैंने पढ़ाई की, क्योंकि मेरे बड़े भाई साहब भी होम्योपैथ थे तो पहले साल से ही मैं उनकी क्लिनिक पे बैठना शुरू कर गई थी
0: जी।
1: इससे बहुत हेल्प हुई मेरे एक्सपीरियंस में। तो जब तक मैं पास आउट हुई 2012 में, 2012 में, तब तक मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस आ गया था। तो फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी 2012 से लेके 2017 तक मैंने खुद की प्रैक्टिस की मोगा में। उसके बाद क्योंकि मैं होम्योपैथी से बहुत जुड़ी थी और मैं बाहर जाना चाहती थी, तो मैंने खोजना शुरू किया कि कौन सी कंट्रीज में होम्योपैथी वैलिड है
0: जी।
1: तो मैंने पाया कि होम्योपैथी न्यूजीलैंड में पूरी तरह वैलिड है
0: जी।
1: ये एक रीजन था मेरा न्यूजीलैंड आने के लिए
0: जी।
1: मैं यहाँ आई स्टूडेंट वीजा पे रोटोरुआ में, इन्फेक्शन रिस्क मैनेजमेंट लेवल 7 कोर्स लेके, जस्ट फॉर एंट्री।
0: और ये कब की बात है?
1: 2017 की जी।
0: अच्छा,
1: ठीक है जी। मैं आती हूँ 15 नवंबर में। एक हमारे जो मेरा इमिग्रेशन कंसल्टेंट है पवन,
0: हाँ जी,
1: की वियाना इमिग्रेशन से, उनकी गाइडेंस से मैंने अपना सीवी तैयार करवाया पहले 10 दिन में
0: जी।
1: ठीक है जी, 10 दिन में सीवी तैयार करवाया, उस सीवी के आधार पे मैंने जॉब्स अप्लाई स्टार्ट कर दी। मैं रहती रोटरुआ में थी, मैं न्यूजीलैंड में सारी जगह जॉब्स अप्लाई कर रही थी और पहले 10 दिनों में ही, न्यूजीलैंड आने के पहले 10 दिनों में ही मेरी जॉब लग गई थी एज अ होम्योपैथ।
0: ओ क्या बात,
1: पार्ट टाइम। पर दिक्कत ये थी कि मैं रोटरुआ में थी, वो जॉब थी कापिटी। कापिटी एक रोमाटी, बेसिकली एक छोटा सा विलेज है वेलिंगटन में
0: जी,
1: 7 घंटे दूर है वो। तो फिर जॉब तो लग गई, फिर मैंने रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू की। कॉलेज शुरू होने से पहले मैं रजिस्टर्ड हुई, मेरी जॉब लग गई थी। जब मैं कॉलेज गई तो पूरे कॉलेज में बात फैल गई थी कि बी जसवीर की एज अ होम्योपैथ जॉब लग गई। उस टाइम बेसिक पे थी $16 समथिंग
0: जी,
1: और मेरी लगी थी जी, ये पर्सनल से इन्फॉर्मेशन है बट ये आई वुड लाइक टू शेयर, मेरी जॉब लगी थी $22 पर आवर, एंड पूरी तरह रुकी इन न्यूजीलैंड। तो ये बहुत बड़ी बात थी
0: जी,
1: मेरे लिए
0: जी।
1: मुझे और प्रूव करना था। जो मेरे एम्प्लॉयर थे डॉक्टर ट्रली सुगुरु, वो डॉक्टर भी हैं और वो होम्योपैथ भी हैं
0: जी,
1: क्योंकि इंडियन होम्योपैथ्स की ट्रेनिंग बहुत एक्सटेंसिव होती है, फुल टाइम स्टडी होती है 5.5 साल की। जो यहाँ पे ट्रेनिंग होती है वो होती है सिर्फ वीकेंड में फॉर फ्यू आवर्स, सिर्फ 4 साल के लिए, सिर्फ वीकेंड में कुछ घंटे आपको स्पेंड

0: करने हैं और आप होम्योपैथ बन जाओगे यहाँ न्यूजीलैंड में, पर वहाँ की ट्रेनिंग बहुत एक्सटेंसिव होती है. तो मैंने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट करी वहाँ पे, एक साल करी मैंने. मैं 20 घंटे करने के लिए मैं रोटरुआ से ओवरनाइट बस लेती थी, 20 घंटे करती थी, फिर मैं वापस जाती थी, पढ़ाई भी करती थी. फिर एक साल पार्ट टाइम जॉब करने के बाद उन्होंने मुझे फुल टाइम जॉब ऑफर करी, मैंने फुल टाइम जॉब ले ली. तो 6 महीने जॉब करने के बाद मैंने रेजिडेंसी डाली.
1: जी,
0: रेजिडेंसी डाल दी मैंने. चलो, उस टाइम रेजिडेंसी का प्रोसेस थोड़ा लंबा था.
1: जी
0: ठीक है जी. तो एक कॉन्फ्रेंस थी पामेस्टर नॉर्थ में ही 2019 में, तो काउंसिल आई हुई थी, होम्योपैथी की काउंसिल आई हुई थी. तो उन्होंने पूछा कि वो एक एग्जीक्यूटिव मेंबर ढूंढ रहे हैं. पता नहीं मेरे मन में क्या आया, तो आई मैंने अपना हाथ खड़ा कर दिया कि मैं चाहती हूँ.
1: आपने वॉलंटरी अपना हाथ
0: वॉलंटरी. हाँ, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी. क्यों? क्योंकि वो एक दूसरी कम्युनिटी का ही चाह रहे थे, क्योंकि न्यूजीलैंड में इंडियन होम्योपैथ्स बहुत हैं, उनको इंडियन फेस चाहिए था कनेक्ट करने के लिए.
1: जी.
0: मेरा तब रोल था लिएजॉन पर्सन का.
1: जी,
0: मेरा रोल था लिएजॉन पर्सन का. काउंसिल में 5 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं, एक प्रेसिडेंट होता है, एक होती है सेक्रेटरी.
1: जी.
0: एक तो मैं सबसे यंगेस्ट एग्जीक्यूटिव थी, पहली इंडियन थी.
1: जी, क्या
0: तो
1: बात,
0: ये भी बहुत बड़ी बात है. एक और जिम्मेवारी आ गई, ये भी निभानी पड़ेगी.
1: जी.
0: तो जो भी इंडियन होम्योपैथ न्यूजीलैंड में आता है, उनकी मैं हेल्प करती थी यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए, जिस प्रोसेस से मैं गुजरी हूँ. तब थोड़ी डिफरेंट थी, तब डिफिकल्ट भी थी. उस प्रोसेस को मैंने काउंसिल के सामने रखा कि हमने तो ऑलरेडी 10-10, 20-20 केसेस सबमिट किए हुए हैं, हमें यहाँ आके भी क्यों करना पड़ता है.
1: जी.
0: तो उन्होंने मेरी बात सुनी, समझी. उन्होंने पूछा कि कहाँ कहाँ पे आपको गैप्स लग रहे हैं. मैंने पॉइंट वाइज सारी प्रपोजल उनके सामने रखी, मुझे यहाँ यहाँ पे गैप लग रहा है, हम इस चीज को ईजी करना चाहते हैं, डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि जो इंडियन होम्योपैथ्स यहाँ पे आके रजिस्टर होना चाहते हैं उनको हम ईजी प्रोसेस दिखाएंगे तो वो और ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे.
1: जी.
0: आपके मेंबर और बढ़ेंगे, न्यूजीलैंड में होम्योपैथी और बढ़ेगी.
1: जी
0: ठीक है जी. वो लिएजॉन पर्सन का रोल किया मैंने निभाया 2023 तक.
1: जी.
0: उसमें हर 3 महीने बाद मीटिंग होती थी, एग्जीक्यूटिव मीटिंग होती थी न्यूजीलैंड के अलग अलग शहरों में. काउंसिल ही उसका खर्चा उठाती थी, काउंसिल ही उसका एजेंडा तैयार करती थी, फिर हम मीटिंग करते थे. जो रूल्स चेंज करने वाले हैं वो चेंज करते थे, जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स चेंज करने वाले हैं. तो वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी जो मुझे लगता है. तो तब तक मेरी फिर रेजिडेंसी आ गई, 2021 में रेजिडेंसी आ गई. तो फिर मैं देखने लग गई जी घर. ट्रांसमिशन गली बनने के बाद पारा पारा उमू के घर बहुत ज्यादा महंगे हो गए थे.
1: जी बिल्कुल.
0: ठीक है जी. तो मैंने थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया, तो पामेस्टन अफोर्डेबल था.
1: जी.
0: उसका एक रीजन है कि यहाँ पे बीच नहीं है.
1: जी बिल्कुल.
0: तो फिर 2021 में मैंने घर ले लिया पामेस्टन में. यहाँ पे आके मैंने, क्योंकि मॉर्गेज हो गई थी, तो फिर मैंने एक जॉब ढूंढी कंसिस्टेंट इनकम के लिए. पार्ट टाइम मैंने एज अ होम्योपैथ किया शुरू, तो जॉब की, क्योंकि शादी भी करनी थी. शादी भी मेरी न्यूजीलैंड में ही हुई है, वेलिंगटन गुरुद्वारा साहिब में. 2023 में मेरी शादी हुई और दिसंबर 2023 में मेरा बेटा हुआ. उसके बाद मेरा जॉब में इंटरेस्ट कम होने लग गया, क्योंकि मेरा ध्यान बच्चे को भी चाहिए, घर को भी चाहिए
1: बिल्कुल
0: सबसे पहले. तो फिर जॉब को मैंने पार्ट टाइम कर दिया, मैंने ज़्यादा जोर होम्योपैथी में लगाना शुरू कर दिया, और पिछले एक साल से मैं फुल टाइम होम्योपैथी ही कर रही हूँ. और पिछले एक साल में मैंने कम से कम नहीं तो 10-12 फ्री होम्योपैथिक कैंप लगाए होंगे. 2 लगाए हमने वेलिंगटन गुरुद्वारा में, 1 लगाया मास्टरटन, 1 लगाया नेपियर, 2 लगाए पामेस्टन नॉर्थ, और इस साल भी हमने 3 कैंप ऑलरेडी हम लगा चुके हैं. अभी पिछले रविवार ही मैं वेलिंगटन गुरुद्वारा साहिब में कैंप लगा के आई हूँ. ये सिर्फ अवेयरनेस, क्योंकि कईयों को पता ही नहीं है कि यहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन मिल भी सकती है.
1: जी बिल्कुल.
0: यहाँ होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर है भी. तो सबसे पहले मुझे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भी आप पैसे कैसे कमाते हो.
1: जी.
0: यही मेरी रोजी रोटी है, मैं यहीं से पैसे कमाती हूँ, यहीं से मैं खर्चे निकालती हूँ. और उसके ऊपर मैं हेल्प भी करती हूँ जो इंडिया से क्वालिफाइड है, न्यूजीलैंड आए हैं, उनको मैं हेल्प करती हूँ रजिस्टर होने के लिए.
1: बहुत बड़ी बात है ये.
0: और इन सालों में मैंने बहुत सारी सर्टिफिकेट

0: सर्टिफिकेशंस की, जैसे कि न्यूट्रिशन में मैंने सर्टिफिकेशन ली, क्योंकि मैं खाने को दवाई की तरह देखती हूँ।
1: जी बहुत बड़ी बात है ये जो आपने अभी करी है।
0: हाँ जी, हम भारतीय
1: जी
0: का स्टेपल फूड है रोटी सब्जी
1: जी।
0: क्या उसमें से आपको आयरन मिलता है? नहीं। क्या उसमें से आपको विटामिन B12 मिलता है? नहीं। क्या आप 7 रंग के डिफरेंट सैलड्स खाते हो एवरी डे?
1: नहीं।
0: क्या आप धूप में एवरी डे रोज 30 मिनट बिताते हो? नहीं। तो आपका विटामिन डी भी कम है
1: जी।
0: चाहे मेरे पास क्लाइंट आता भी है, उनमें से भारतीय क्लाइंट्स का 80% का विटामिन डी कम होगा, और ये मैं लिख के देती हूँ
1: जी,
0: लाइफस्टाइल की वजह से, एक डाइटरी
1: जी
0: और लाइफस्टाइल की वजह से ये न्यूट्रिएंट्स तो कम होते ही हैं। अगर वो मीट ईटर हैं भी, तो मीट के नाम पे वो क्या खाते हैं? चिकन।
1: चिकन जी बिल्कुल।
0: चिकन में आयरन नहीं होता, आयरन होता है रेड मीट में
1: जी।
0: तो ये तो बहुत बेसिक से प्रॉब्लम्स हैं। तो फिर मैंने उसकी न्यूट्रिशन का एक एक्नेम से सर्टिफिकेशन ली, तो वो चीज मुझे लगता है मुझे बहुत हेल्प करती है अपने क्लाइंट्स को गाइड करने में। होम्योपैथी से तो मैं हेल्प करती हूँ, साथ में मैं लाइफस्टाइल चेंजेस उनको रेकमेंड करती हूँ और डाइटरी चेंजेस रेकमेंड करती हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप सही खाते हो तो 50% प्रॉब्लम्स तो आपकी वैसे ही हल हो जाती हैं।
1: जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करने में, सीखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल हमारे और भी हैं।
0: हाँ,
1: कुछ दर्शकों के सवाल भी होंगे।
0: हाँ जी।
1: तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं दर्शकों के बिहाफ पे आपसे ही कुछ सवाल करूँ।
0: हाँ जी।
1: लोगों को होम्योपैथी के बारे में कम पता है, जैसे आपने बोला, लोगों को यहाँ पे और इंडिया में लोगों को फिर भी होम्योपैथी के बारे में पता है, न्यूजीलैंड में एलोपैथी ज्यादा चलती है। तो आप जो कि एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, दोनों में फर्क क्या है,
0: एलोपैथी में और होम्योपैथी
1: में?
0: ठीक है जी। एलोपैथी में हम सिम्टम्स को दबाते हैं
1: जी।
0: अगर पेन हो रही है, आपको पैरासीटामोल दे दी जाएगी
1: जी बिल्कुल।
0: वो पेन हो क्यों रही है ये नहीं पूछा जाएगा
1: जी।
0: वो काम होम्योपैथी का है, वो होम्योपैथ करेगा। आपकी डिटेल्ड केस टेकिंग होगी, आपके पेन कहाँ पे है, पेन को आराम कैसे आ रहा है, बढ़ कैसे रही है। ये है तो छोटे छोटे क्वेश्चंस, पर ये होम्योपैथ कोई बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है ताकि वो ठीक कर सके
1: जी।
0: जो डॉक्टर हैनेमन हैं, उन्होंने एक थियोरी इजाद की थी, लाइक्स क्योर लाइक्स, कि जो चीज लक्षण बनाती है वही चीज उन लक्षणों को ठीक भी करती है
1: जी।
0: तो इस हिसाब से हम केस टेकिंग करते हैं। तो होम्योपैथी क्या करती है, जड़ से रोग को मिटाने की कोशिश करती है। एलोपैथी इसका उल्टा है, वो सिर्फ दबाती है
1: जी।
0: तो ज्यादा जोर हमें लक्षणों पे इंसान पे देना पड़ता है। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, होम्योपैथी रोग को नहीं ठीक करती, होम्योपैथी इंसान को ठीक करती है। जब हम केस टेकिंग करते हैं, हम पूछते हैं आपको क्या क्या दिक्कतें हैं, वो 10 दिक्कतें बताते हैं हमें। तो ऐसा तो नहीं हम कि 10 दिक्कतों की 10 दवाइयां दे देंगे एलोपैथी के हिसाब से, नहीं। हम फिर उसके बाद लक्षणों के बाद, फिजिकल सिम्टम्स के बाद, हम उसके मेंटल सिम्टम्स पूछते हैं। आपका चाइल्डहुड कैसा रहा, आपके ट्रॉमास कैसे हैं, आपकी वल्नरेबिलिटीज कैसे हैं, आपको किन चीज़ों से गुस्सा आता है। हम उसकी हर चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। आपको खाने में क्या पसंद है, आपको ठंडा पानी पसंद है, गर्म पानी पसंद है। तो पहले मैं बता देती हूँ कि भी ये मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि मैं आपकी सिमिलर मेडिसिन चूज कर सकूं कि आपकी वो सारी 10 की 10 प्रॉब्लम्स को एड्रेस करे एक चीज, क्योंकि वो मान लो मैक्स की दवाई है, वो मैक्स की हेडेक की दवाई नहीं है
1: जी, समझ
0: गया। वो मैक्स के जोड़ों की दवाई नहीं है, वो मैक्स की दवाई है, क्योंकि मैक्स को मे बी कोई शॉक लगा था
1: जी
0: हफ्ता पहले, इसकी वजह से उसका सर दर्द नहीं ठीक हुआ है
1: जी।
0: तो वो शॉक एक ट्रिगर है, मैं वो दवाई ढूंढूंगी कि किस दवाई में शॉक से हेडेक होता है और लेफ्ट साइड पे हेडेक होता है और उसको अंधेरे में आराम आता है, उसको चुप रहने से आराम आता है, उसको बोलने से गुस्सा आता है। तो मैं फिजिकल लेवल पे भी उसको मैच करने की कोशिश करूंगी, मेंटल लेवल पे भी और इमोशनल लेवल पे भी। तो इट इज़ अ हार्ड वर्क, क्योंकि कई बार क्लाइंट्स को पता नहीं होता कि कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, कौन सी नहीं, उनको नहीं पता, आपको नहीं पता है कि मैं क्या जानना चाहती हूँ
1: जी।
0: तो फिर उनको समझाना पड़ता है धीरे धीरे, पहले बातें करनी पड़ती हैं, फिर धीरे धीरे निकलती है स्टोरी, निकलती है स्टोरी हर एक की होती है
1: जी,
0: क्योंकि हम बाहर आए हैं, सबकी स्टोरी है, सबकी स्ट्रेस
1: जी बिल्कुल
0: है। दूसरी बात, आपने बहुत अच्छी की कि यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीजन है

0: यहाँ पे होम्योपैथी गवर्नमेंट फंडेड नहीं है. आप हॉस्पिटल, आप अपनी प्रैक्टिस पे, रजिस्टर्ड प्रैक्टिस पे जाओगे, आपको $60 आपको पे करने पड़ेंगे. उसके अगेंस्ट उस प्रैक्टिस को आपके नाम पे फंडिंग आती है गवर्नमेंट से. मान लो उस वो फंडिंग अराउंड बच्चों की होती है $3,000 फॉर 3 months. ठीक है जी, वो गवर्नमेंट दे रही है. वो जो आप $60 दे रहे हो वो सिर्फ कुछ कॉस्ट कवर करने के लिए है. तो होम्योपैथी यहाँ पे फंडेड नहीं है. तो कईयों को ये महंगी लगती है
1: जी,
0: कई जानबूझ के फिर इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते क्योंकि वो अपने जेब से खर्चेंगे
1: जी.
0: ये बहुत बड़ी बात है. दूसरी बात, यहाँ पे गवर्नमेंट होम्योपैथी को बहुत ज्यादा सपोर्ट भी नहीं करती है
1: जी.
0: जब कोविड हुआ था, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेशनल टीवी पे होम्योपैथी को प्रमोट किया था कोविड के लिए
1: जी,
0: कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन लो, आपके लक्षण ठीक हो जाएंगे. वहां पे गवर्नमेंट होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज हैं, यहाँ पे नहीं है. ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है
1: जी.
0: और जो है माओरी लोग है वो रोंगवा माओरी फॉलो करते हैं, पर कुछ परसेंटेज मैंने देखा है जो पहले दिन से होम्योपैथी ले रहे हैं गोरे
1: जी,
0: यहाँ पे कीवी पीपल
1: जी,
0: वो होम्योपैथी ही लेते हैं
1: जी. जी, और मैं भी कुछ लोगों को जानता हूँ मेरी पर्सनल लाइफ में जो कि होम्योपैथी को फॉलो करते हैं यहाँ पे कीवी लोग. और मैं शुरू शुरू में बहुत हैरान हुआ था क्योंकि मैंने तो खुद होम्योपैथी नहीं देखी थी. तो वो बोलते हैं कि भाई हमारे तो पूरे घर में माँ बाप के टाइम से हम होम्योपैथी को ही फॉलो कर रहे हैं. और मैं सच बताऊं तो न्यूजीलैंड में वो फैमिली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी, दे प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट फिटेस्ट पीपल जो मुझे जानते हैं. तो वो एक अच्छी एग्जाम्पल है.
0: हाँ जी, मैं आपको इसके एक और एग्जाम्पल देती हूँ. अभी रिसेंटली अनुष्का शर्मा है जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस
1: जी,
0: उन्होंने भी अपना ट्वीट करके लिखा था, विच इज एक्स नाउ. उन्होंने लिखा है कि मेरे सफर में होम्योपैथी ने मेरा बड़ा साथ दिया
1: जी.
0: अब इस चीज पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हुई है क्योंकि हर बंदा होम्योपैथी को नहीं मानता है, फॉलो करता है. अभी मैंने एक वीडियो भी देखी जिसमें गौतम गंभीर साहब
1: जी
0: होम्योपैथी की पिल्स ले रहे हैं ऑन कैमरा.
1: ओके जी,
0: ठीक है जी.
1: तो ये जो अभी क्रिकेट मैच चल रहा था
0: उसमें उसके है कटिंग है. और जो हमारी रॉयल फैमिली है
1: जी जी,
0: किंग चार्ल्स,
1: हाँ जी,
0: क्वीन एलिजाबेथ,
1: हाँ जी,
0: वो कट्टर फैन थे होम्योपैथी के.
1: तो क्या बात है, कितनी बड़ी बात है ये.
0: हाँ जी,
1: अभी अगर मेरे को लगता है अभी हम अवेयरनेस की बात कर रहे थे तो उसमें अगर कहीं विराट कोहली अगर डाल दें,
0: हाँ जी,
1: तो आपकी अवेयरनेस सब जगह हो जाएगी.
0: मेरे हिसाब से अगर उनकी वाइफ
1: आपने अभी फर्क का बताया, तो आपने कभी सोचा छोटे से होते बड़े होते तक कभी एलोपैथी की तरफ भी जाके देखा जाए, कि कभी दिल में ही नहीं आया?
0: कभी दिल में नहीं आया
1: जी,
0: क्योंकि मेरे भाई के पास जब पेशेंट्स आते थे, वो होम्योपैथ के पास कब आता है बंदा, जब सारी तरफ से निराश.
1: हाँ,
0: ठीक है जी. तो वो स्टोरी सबसे पहले आके बताते हैं
1: जी.
0: जब आपको एलोपैथी की ऐसी ही इमेज बन रही है तो आप क्यों जाओगे जी उस तरफ
1: जी. जी, एक और मेरा सवाल है आपसे, ये सवाल थोड़ा कठिन भी हो सकता है लेकिन मुझे नहीं लगता आपसे बातें करते हुए आपके लिए कुछ भी कठिन है. तो सवाल ये है, आपने शुरू शुरू में बताया जब आपने स्टडीज की यहाँ पे, आपने फिर उसके बाद आप अपॉइंट हुए फर्स्ट लेडी, तो आपका जो सफर है आपको

0: इन फैक्ट कि जो होम्योपैथी है सबके लिए इक्वली एक्सेसिबल हो
1: जी,
0: सिर्फ भारतीयों के लिए क्यों
1: जी,
0: ये फ्री है, ये फ्री है तो कोई बात नहीं जी।
1: बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। मेरा एक सवाल और है आपसे, सवाल तो बहुत है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ, हमने शुरू में ये सोचा था एक बीच में गाना चलाएंगे जो कि हम हमेशा चलाते हैं, लेकिन आपकी बातें इतनी इंटरेस्टिंग है और इतना कुछ सीखने को मिल रहा है कि हमारा समय समाप्त होने वाला है और हम गाना नहीं चला पाएंगे। तो अच्छी बात है, आपको फिर से बुलाना पड़ेगा, लेकिन आपसे आपको इजाजत देने से पहले मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ बहुत बड़ा, अगर किसी ने आपको संपर्क करना है तो वो कहाँ पे और कैसे मिल सकते हैं आपको?
0: हाँ जी, सबसे पहले तो मेरा फोन नंबर है जी 0204107 1167। मेरा फेसबुक पेज है हार्मनी होम्योपैथी बाय जसवीर कौर, सेम नेम पे मेरा इंस्टाग्राम पेज है, टिकटॉक है, और मेरी वेबसाइट है www.harmonyhomeopathy.co.nz। अगर वो मुझे ईमेल करना चाहते हैं तो उसका एड्रेस है जसवीर jasvir@harmonyhomeopathy.co.nz।
1: क्या बात है, सवाल बहुत हैं जसवीर जी, बहुत ज़्यादा सवाल हैं, लेकिन समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा, तो हमें अनफॉर्चुनेटली अभी दर्शकों से भी और आपसे भी इजाज़त लेनी पड़ेगी, लेकिन मैं दर्शकों को ये वादा करता हूँ कि हम, मैं जानता हूँ कि आप जसवीर जी से और सुनना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं और होम्योपैथी के बारे में और जानना चाहते हैं, आपको ज़रूर मौका देंगे और जसवीर जी हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे अगले हफ्ते, अगर वो जुड़ सकते हैं तो हम आपसे ये दरख्वास्त करते हैं।
0: हाँ जी, मुझे बहुत खुशी हुई आपने बुलाया, और मुझे भी टाइम का बिल्कुल आइडिया नहीं
1: पता
0: लगा,
1: ही नहीं
0: पता ही नहीं लगा
1: जी, बिल्कुल
0: कब इतना टाइम हो गया, हम इतने फ्लो में बातें कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था शेयर करने में। हाँ जी, मैं जरूर आऊंगी जी, आप बुलाइए,
1: हम जरूर बुलाएंगे आपको।
2: सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस शो परिचय में आना चाहते हैं तो मुझे 0216265422 पर पहुँच सकते हैं, आप हमें किसी भी समय कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। आप परिचय को हर थर्सडे 5:30 PM से सुन सकते हैं, और इस पॉडकास्ट को दोबारा सुनने के लिए NPR के वेबसाइट पर जा सकते हैं जो है www.npr.nz/show/परिचय।
3: Providing opportunities, facilities, support and training to individuals and organizations in our community to create content that reflects their views and values. NPR.